0: क्या तुम अपना गया दिन की रे आपने दिन के बारे में जानना चाहो तसो हो भले आशा ज्योतिष दर पर ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन में
1: हमारा यहाँ वृंदावन बठे ज्योतिष विद्या पढ़बटी आएगा ज्योतिष विद्या का बारे में बहुत ही जानकारी भएका बहुत ही वर्ष अगाड़ी बठे ज्योतिष विद्या का बारे में जानने देश र परदेश में सम्मान र ख्याति पाएका ज्योतिष पंडित लक्ष्मण सुवेदीले कम्प्युटर का माध्यम बठे चिना चिठा बनाउने रे चिठा भाग्य हेद्या घर बनाउना कि लेखा माटो हेद्या वास्तुशास्त्र का बारे में सब बताउने पृथ्वी को उद्धार गद्या रत्न रे जंतर बीज लौने जन्म कुंडली में भएको दोष ग्रह को शांति विशेष धार्मिक रे बौद्धिक विधि बठे गद्या
0: सम्पर्क की लेखा ज्योतिष पंडित लक्ष्मण सुवेदी ज्योतिष दर्पण ज्योतिष कार्यालय भरतपुर चितवन
1: फोन गद्दा की लेखा फोन नंबर 9845-39-76-58 रे 9814-27-36-01 तमु फोन बठेले आफ्नो भाग्य हेर्न सकन्छौ आज संगीतमय पुराण लगाउनक लेखालाई सम्झन सकन्छौ।

0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हुई गवा गए।
1: हाँ तब परसलिया याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: गर्जन सधै बाघ झैं रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

यो हो रेडियो टाइगर 90.2 मेगाहर्ज। रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला साँझको 6 बजेको छ।

0: राम राम ओ नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा टीकाराम चौधरी सँग आरती चौधरी स्वागत बा। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र के समन्वयमा रेडियो टाइगर बर्दिया सिन्हा उत्पादन करल कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा प्रविधि मसेना समन्वित मेरमेरिक जानकारी कृषक उपनके पुगेकलाग ओ कृषक उक कर्तीला खेती प्रणालीमा ऐना समस्या प्रश्न जिज्ञासा कृषक उकनके आशा अपेक्षा गुनासो सुझाव सुनकेन मेरमेरिक जानकारी देना उद्देश्य से यी कार्यक्रम संचालन करगेलक हो।
1: यी कार्यक्रम महिनामा दुईचो हरेक महिना 1 गते ओ 15 गते सन्ध्याके 7 बजे रेडियो टाइगर 99.2 MHz बर्दिया ओस्तक अनलाइनमा tigerkhabar.com ओ मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो मसिफी सुन्ने सेकजाइट
0: ओस्तक रेडियो गिर्भ एफएम 90.7 MHz शान्ति बजार ओ अनलाइनमा मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रो मसिफेना सुन्न सिक्ने माथि कार्यक्रम के फिर दोसरो प्रसारण बिहान के 7 बजे के सुन्न सिक्ने बाती उष्टाक एक अठारपा छ 22 गते यह कार्यक्रम सुन्न सिक्ने बाती। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र ओ कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ हुकन सेना कृषक हुकन के आशा अपेक्षा ओ गुनासो तथा सुझाव के सम्बोधन एवं कृषि क्षेत्र का मेरमेरिक जानकारी प्रसारण करिने बाती।
1: पशुपक्षी गणके उत्पादन वृद्धि कैक कृषक समुदाय के आय आर्जन और जीवन स्तर उठाके देश भर के कृषि क्षेत्र के देहर उत्पादन